वेदव्यासाय नमः अस्मत् गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुधियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।